0: साहब से 52% कम हुई है, जो मैं रात को चीनी कस्टम हुकाम की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि नायाब अर्जियाती मकनतीस की मजमुई बरामदात 5,375 टन रही, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 3.5% कम है। नायाब अर्जियाती मकनतीस दीगर मकासद के अलावा बरकी गाड़ियों की मोटरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जापान को तरसील 111 टन रही, जो 52.2% की नुमाया कमी है। चीनी हुकूमत ने जनवरी से जापान के लिए दोहरे इस्तेमाल वाली अशिया पर बरामदी कंट्रोल सख्त कर दिया है। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि इन पाबंदियों का असर हो रहा है। इन आदाद व शुमार से ये भी पता चलता है कि टंगस्टन को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कलीदी खाम माल की जापान जाने वाली बरामदात जनवरी से जुलाई तक 0 रहीं। टंगस्टन एक कलीदी मादन है जो वसी तादाद की सनतों में इस्तेमाल होती है। गुज़िश्ता माह जापान को चीन की मजमुई बरामदात में 14% इजाफा हुआ, ताहम आदनियात की वो खेप जो जापान ज़्यादातर चीन से दरामद करता है और बाज़ दीगर एशिया में कमी वाक़ हुई। इससे जापानी सनतों पर पड़ने वाले असरात के खदशात पैदा हो गए हैं।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ़ लाइए।

0: कॉर्नर, आज हम आपको बता रहे हैं कि जापान में बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए।
1: हिरा, आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करती हैं?
0: इसका ताल्लुक बीमारी से है। मामूली मसले की सूरत में मेडिकल स्टोर से दवा ले लेती हूँ।
1: वाकई बीमारी के अलामात मामूली हो तो मेडिकल स्टोर से दवा लेना आसान है। स्टोर के माहिर अद्वियात को पेट में दर्द या बुखार वगैरह बीमारी के अलामात बताकर डॉक्टर नुस्खे के बगैर दवा ली जा सकती है।
0: लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो तो क्या किया जाए?
1: ऐसी सूरत में मुतल्लिका शोबे, मसलन जनरल फिजिशियन या आंख या कान वगैरह के शोबे के हामिल क्लिनिक या अस्पताल जाना चाहिए। मुआयने के बाद डॉक्टर दवाएं तजवीज़ करेगा। डॉक्टरी नुस्खा दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवा लें। हुकूमत जापान के शोबे सियाहत JNTO की वेबसाइट पर उन तिब्बी इदारों की फहरिस्त मौजूद है जहाँ गैर मुल्की सयाहों के मुआयने की सहूलत मौजूद है। साइट तलाश करने के लिए फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO से सर्च करें। इस वेबसाइट को महफूज कर लेना बेहतर होगा। इसके अलावा सियाहती मराकज़ या होटल के इस्तकबालिया काउंटर से भी करीबी हस्पताल के बारे में मालूमात ली जा सकती है और किसी हंगामी सूरत हाल में 119 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई जा सकती है।
0: 119, मैं ये नंबर याद रखूंगी।
1: खुदा करे कि कभी ये नंबर इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, लेकिन बहरहाल इसे याद रखना मुफीद होगा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 21 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान और ओमान के विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी चर्चा में इस अहम जलमार्ग के किनारे स्थित देशों और इसका उपयोग करने वाले राष्ट्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने बृहस्पतिवार को खाड़ी देश ओमान में विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ दोपहर के भोज पर चर्चा सहित 2 घंटे से भी लंबी बातचीत की। ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ईरान के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश इस अहम परिवहन मार्ग के आमने सामने स्थित हैं। मोतेगी ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी जहाज़ों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ओमान और अन्य खाड़ी देशों के आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने से जुड़ी जापान की सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया। बद्र ने सतत ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में सहयोग जारी रखने की ओमान की मंशा व्यक्त की। रूस के रक्षा अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपने प्रशांत बेड़े के साथ ये मानकर अभ्यास किया है कि जापान के उत्तरी क्षेत्र के निकट जहाजों पर हमला हुआ है। उत्तरी क्षेत्र के द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, एक निर्देशित मिसाइल क्रूजर और बेस्टियन नामक एंटी शिप मिसाइल प्रणाली शामिल थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले सप्ताह एक सैन्याभ्यास का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि नाटो वहां अपने पैर पसारने लगा है और एक नया सैन्य राजनीतिक गुट बन रहा है। उन्होंने जापान द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी अनुचित बताया। जापान सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के एक द्वीप पर पुतिन के दौरे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने जापान के उत्तरी क्षेत्र में रूस की बढ़ती सैन्य उपस्थिति की आलोचना की है। उत्तरी क्षेत्र के चारों द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जापान इन पर अपना दावा करता है। उत्तरी क्षेत्र के निकट रूस के नौसैनिक अभ्यास के बाद बृहस्पतिवार को ओमान में मोतेगी ने पत्रकारों से बात की। मोतेगी ने कहा कि मिसाइल अभ्यास सहित रूस की सैन्य उपस्थिति जापान के रुख से मेल नहीं खाती और इसलिए अस्वीकार्य है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तरी क्षेत्र के हालिया दौरे के जवाब में जापान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मोतेगी ने कहा कि जापान ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जापान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय आने पर जवाब देने पर विचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि जापान उत्तरी क्षेत्र की संप्रभुता के मुद्दे को सुलझाने और रूस के साथ शांति संधि करने के अपने रुख पर कायम है। मोतेगी ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर के खानुमा शहर स्थित शिन खानुमा स्टेशन पर बृहस्पतिवार सुबह तोबू रेलवे की निक्को लाइन की पटरियों पर काम कर रहे चार मजदूर एक लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इन चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। रेलवे कंपनी का कहना है कि पटरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी शायद एक दूसरे को ठीक से संदेश नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ये मजदूर पटरियों पर खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे थे। तोबू रेलवे के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दुर्घटना स्थल पर 10 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 7 खरपतवार हटा रहे थे और बाकी 3 को निगरानी करने और झंडों से संकेत देकर ट्रेनों को स्टेशन पर आने की अनुमति देने का काम सौंपा गया था। अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों के आगमन पर नजर रख रहे दोनों कर्मचारी अपने निर्धारित स्थानों पर थे, लेकिन हो सकता है कि वे आपस में संवाद नहीं कर पाए। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन चालक को मजदूरों के पटरियों से हटने का संकेत मिला, जिसके बाद वो ट्रेन लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। पुलिस इन्हें पेशेवर लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुई मौतें मानकर इस मामले की जांच कर रही है। जापान के युवराज और राजकुमारी आकिशिनो ने पैरागुए में एक स्कूल का दौरा किया है, जहां बच्चों को जापानी संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाता है। युवराज और राजकुमारी ने बृहस्पतिवार को राजधानी आसुनशियोन स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सांतियागो पेन्या से औपचारिक भेंट की। इसके बाद शाही दंपति ने चाय समारोह सहित जापानी भाषा और संस्कृति की कक्षाएं देने वाले एक स्कूल का दौरा किया। अनुमान है कि पैरागुए में 10,000 जापानी प्रवासी और उनके वंशज रहते हैं। स्कूल में शाही दंपति को फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए, जिसके बाद शाही जोड़े ने पुस्तकालय में छात्रों से बातचीत की। एक छात्र ने युवराज को एक ओरिगामी तोता भेंट किया, जिसे युवराज ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। स्कूल ने दंपति के स्वागत समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें जापानी वाक्यांशों वाला एक गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में कलाकारों ने अपने सिर पर बोतलें रखकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी युवराज और राजकुमारी ने तालियां बजाकर सराहना की। जुलाई में चीन से जापान को दुर्लभ धातु चुंबकों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 52% की गिरावट आई। चीनी सीमा शुल्क अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार दुर्लभ धातु चुंबकों का कुल निर्यात 5,375 टन रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 3.5% कम है। दुर्लभ धातु चुंबकों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर आदि में किया जाता है। जापान को भेजी गई मात्रा 111 टन रही, जिसमें 52.2% की बड़ी गिरावट आई है। चीन सरकार ने जनवरी से जापान को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इन प्रतिबंधों का असर दिख रहा है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि टंगस्टन के शोधन में प्रयोग होने वाले एक प्रमुख कच्चे माल का जापान को निर्यात जनवरी से जुलाई तक शून्य रहा। टंगस्टन एक अहम खनिज है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।